0: जवाब सच्ची सच्ची बताओ, वो या तो खुद ही छलेड़ा है या इतना मजबूत को छलेड़ा उनमें घुस के हम लोगों को तंग कर रहा है। तो गंभीर बात है।
1: आए, मुझे

इस वीक के सीक्यू का तो हमारा इस वीक का सवाल है, जो गाना आप अभी सुनेंगे उसमें आवाज किसका है। और हमारा पता, सीने सफर केयर ऑफ HMV FM, 2 Ribbon Street, कलकत्ता 16। सीने सफर केयर ऑफ HMV FM, 2 Ribbon Street, कलकत्ता 16। तो एक बार फिर इजाजत लेते हैं हम, मगर इसमें ना है कोई गम, क्योंकि लौट आएंगे हम अगले शुक्रवार इसी समय इसी दिन। सो बाय एंड टिल देन ट्यून ऑन टू HMV FM 107 MHZ।